तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सज्जन सुहेले राखो हो राखन हार दयाला, नानक करके गोले हो आया दूरा हो चल के, मैं तकी तो शरणाई जियो, मैं आशा रखी चित में, मेरा सबो दुख गवाए जियो, सोका हो टल गुर सेवीए, एहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसे आए गुरु के, जन्म मरण दुख जाए, होवे सिफत खसम भी, मूरे अर्थों पुरुषों टटिए, रूठे सच्चे पातशाह, माल जन्म जन्म दी कटिए, सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहां साहो, जिस पास बैठिया सोहिए, सबना दा वे साहो, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्लोक दया करणं दुख हरणं उच्चरणं नाम कीर्तन है, दयाल पुरख भगवान है, नानक लिप्त ना माया। दया करणं दुख हरणं उच्चरणं नाम कीर्तन है, दयाल पुरख भगवान है, नानक लिप्त ना माया। पाहे बलंदड़ी बुझ गई, रखंदड़ो प्रभ आप, जिन उपाई मेदनी, नानक सो प्रभ जाप। पौड़ी जा प्रभ भय दयाल, ना व्यापै माया, कोट अगा गए नास, हर एक त्याया।

कुल सबाया वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु।

प्रगास कई कोट तत् के बेते सदा निहारें को नेत्रे कई कोट नाम रस पीवह अमर पये सद सद ही जीवह कई कोट नाम गुण गावह आत्म रस सुख सहज समावह अपने।

दूसर नाही कोय। नानक तिस बलिहारणै जल थल महियल सोए अष्टपदी, करन करावन करनै जोग जो तिस पावै सोई होग। किन मैं था प्यो था पुनहारा, अंत नहीं किस पर वारा। हुक्मे तार या तार रहावै, हुक्मे उपजै हुक्म समावै। हुक्मे ऊच नीच व्यवहार, हुक्मे अनक रंग प्रकार। कर कर देखै अपनी वड्याई,

सहस खटे लख का उठ तावै तृप्त न आवै माया पाचै पावै अनक भोग विखिया के करै न तृप्तावै खप खप मरै बिना संतोख नहीं कौ राजै सुपन मनोरथ ब्रथे सब काजै नाम रंग सर्व सुखोय बड़ भागी किस

जी वाहिया संत के दुखी की पूजन आयासा संत का दुखी उठ चले निराशा संत के दुख न त्रिष्ठा कोई जैसा भाव तैसा कोई होए भयाव कीर्तना मिट कोई नानक जान सचा सोए सब घट तिसके ओ करना हार।

जप हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जप हो अवरह नाम जपावो भगत पाए तरिया संसार बिन भगती तन होसे चार सर्व कल्याण सुख निद नाम बूढ़त जात पाए विश्राम सगल दुख का होत नास नानक नाम जप हो गुणदास उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मन तन अंतरे सुआव नेत्र हो पेख दर्श कोय मन बिकसै साच

आसन जब पूर्ण करता प्रभु सोए, तब जम की त्रास कह हो किस होए। जब अभिगत अगोचर प्रभु का, तब चित्रगुप्त किछ पूछत लेखा।

केवल जगदीश तय चल चित्र लगत कौ केस। जो स्वरूप ही जो संग समावे तय किस भूखवन तृप्ता वै करण करावन करण हार। नानक करते का नाहीं सुमार जब अपनी शोभा अपन संग बनाई। तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई जय।

अज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन प्रगास अष्टपदी संत संग अंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समगरी एकस घट माह अनक रंग नाना दृष्टा है नौ निध अमृत प्रभ का नाम देही मह इसका विश्राम सुन समाद अनहत तह नाद कहन न जाई अचर्ज विस्माद तिन देखे अज से आप दिखाए नानक तिस जन सोजी पाए सो अंतर सो बाहर अनंत घट घट व्याप रहे आप भगवंत तरन माहे आकाश पयाल सर्ब लोक पूरन प्रतपाल बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म पौन पाणी बैसंतर माहे चार कुंट दह दिसे समाहे तिस्ते भिन्न नहीं कोठाओ गुर प्रसाद नानक सुख पाओ वेद पुराण सिमृत मह देख ससियर सूर नक्षत्र मह एक बाणी प्रभ की सब को बोले आप अडोलना कब हूँ डोले सर्व कलाकार खेले खेल मोल ना पाइए गुण है अमोल सर्व ज्योत मह जाकी ज्योत धार रहे हो स्वामी ओत पोत गुर प्रसाद परम का नास नानक तिन मह एहो विसास संत जना का पेखन सब ब्रह्म संत जना कै हृदय सब धर्म संत जना सुनहै शुभ बचन सर्व व्यापी राम सांग रचन जिन जाता तिसकी यह रहत सत बचन साधु सब कहत जो जो होए सोई सुख माने करन करावन हार प्रभ जाने अंतर बसे बाहर पी ओही नानक दर्शन देख सब मोही आप सत किया सब सत तिस प्रभते सगली उत्पत तिस भावै ता करे विस्थार तिस भावै ता एक अंकार अनक कला लखी नह जाए जिस भावै तिस लय मिलाए कावन निकट कावन कही है दूर आपे आप भरपूर अंतर गात जिसे आप जनाए नानक तिस जन आप बुझाए सर्व भूत आप वरतारा सर्व नैन आप पेखन हारा सगल समग्री जा कातना आपन जस आप ही सुना आपन जान एक खेल बनाया आज्ञाकारी की नीम आया सब कै मद अलिप तो रहै जो किस कहना सो आपे कहै आग्या आवै आग्या जाए नानक जा पावै ता लय समाए इस्ते हुए सो नाही बुरा उरै कहो किनै काश करा आप भला कर तू ते अतनी की आपे जाने अपने जी की आप साच धारी सब साच ओत पूत आपन संग राच ताकि गातमित कही ना जाए दूसर होए ता सोजी पाए तिसका किया सब परवान गुर प्रसाद नानक हो जान जो जाने तिस सदा सुख होए आप मिलाए लय प्रभ सोए ओ तनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत धन धन धन जान आया जिस प्रसाद सब जगत तराया जाने आवन का।

अष्टपदी। पूरे गुर का सुनो उपदेश, पार ब्रह्म निकट कार पीख, सास सास मरहो गोबिंद, मन अंतर की उतर चिंद। आस या नित त्या गोह तरंग, संत जना की धूर मन मंग, आप छोड़ बेनती कर हो, साध संग अग्न सागर तर हो। हर तन के पर लिहो भंडार, नानक गुर पूरे नमस्कार, खेम कुशल सहज आनंद, साध संग पज परमानंद। नरक निवारो धारो जियो, गुण गोविंद अमृत रस पियो, चित चित वह नारायण एक, एक रूप जाके रंग अनेक। गोपाल दामोदर दीन दयाल, दुख भंजन पूरन कृपाल, सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का है आधार। उत्तम श्लोक साध के बचन, अमलीक लाल हे रतन, सुनत कमावत होते उदार, आप तरह लो कह निस्तार। सफल जीवन सफलता का संग, जाके मन लागा हर रंग, जय जय शब्द अनाहद वाजै, सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजै। प्रगटे गोपाल महात कै माथे, नानक उदरे तिन कै साथे, सारण जोग सुन सरनी आए, कर कृपा प्रभ आप मिलाए।

आल जंजाल विकार ते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभ तारी नानक निभी खेप हमारी प्रभ की उसत कर हो संत मीत सावधान एकागर चीत सुखमनि सहज गोबिंद गुण नाम जिस मन बसै सोहोत निदान सर विशाता की पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते ऊज पाए अस्थान बहुर न होवे आवन जान हर तन खाट चले जन सोए नानक जिस है परापत होए खेम शांत रिद नाव निद बुद्ध ज्ञान सर्ब तह सिद्ध विद्या तप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम इसनान चार पदार्थ कमल परगास सब कै मद सगल ते उदास सुंदर चतुर तत् का बेता समदर्शी एक दृष्टेता हे फल तिस जान।

देनदार है न चुकै भोग, गुण एहो होर नाहीं कोए, ना को होआ ना को होए, जेवड़ आप तेवड़ तेरी दात, जिन दिन करके कीती रात, खसम विसारह ते कम जात, नानक नावै बाज सनात, राग गुजरी महला चौथा, हर के जन सत गुर सत पुरखा।

गुरमत नाम मेरा प्राण सखाए, हर कीरत हमरी रह रास रहाओ। हर जन के वड भाग वडेरे,

है मिल संगत गुण परगास जिन हर हर हर रस नाम न पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास धन धन सत संगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम परगास।

प्रणवत नानक तिनकी सरना, जिन तू नाही विसरिया। आसा महला पंजवा, भई प्राप्त मानुख देहुरिया। गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काज तेरा कितै न काम।

एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं चौपाई पुन राशिष का काटा सीसा श्री अस्केत जगत के ईसा पोहपन ब्रिष्ट गगन ते पई सब हिन आन बधाई दई। धन्य धन्य लोगन के राजा दुष्टन दाह गरीब निवाजा अखल पवन के सृजन हारे दास जान मोहले हो उबारे। कव्यो बाच बेनती चौपाई हमरी करु हाथ दै रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा। तब

हूँ जो सदा हमारी पच्छा सिरिया सुजु करिय रक्षा। राख ले हूँ मोहि राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता।

जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जूथियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताही हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जक्षन उपजायो। आद अंत एकै अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सतरन को पल मुँह बंद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर स्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधु उनके सुखी। एक एक की पीर पछानै, घट घट के पट पट की जानै। जब उदकरख करा करतारा, प्रजा तरत तब देहे अपारा। जब आकरख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देहे तर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तारै, आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम।

कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुमराता। किल्बिक सगल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को क्षय करता। श्री अस्तु जप पय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन वांछत फल पावे सोई, दुख न तिसै व्यापत कोई। अड़िल सुनै गुंग जो याहि, सुरस न पावई। सुनै मूढ़ चित लाई, चतुरता आवई।

चौपाई संबत 17 सहस पणिजय अर्ध सहस फुनतीन कहिजय भाद्रव सुदी अष्टमी रववारा तीर्थद्रव ग्रंथ सुधारा स्वैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक न जान्यो

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माई सतगुरु मैं पाया सतगुर

जी को खावैन जी को पुंचैन तिसका होए उधारो। एह वस्त तजी नह जाई नित नित रख उरतारो।

नायक खसम हमारे निमख निमख तुम ही प्रतपालह हम बारिक तुमरे तारे तुम दाते ठाकुर प्रतपालक नायक खसम हमारे निमख।

कल कले स्तन माए मिटावो, नाम जपत अगन तने के, कीने राम नाम एकाके, ताकि महिमा गनी ना आवे, नानक उनसंग मोय उधारू, भगत जना के मन विश्राम रहो, पक्के सिमन दुख जम नसे, रखे सिमन दुश्मन डरे, रखे सिमन आन दिन जागे, रखे सिमन दुख न संतापे, सर्व ना नानक कर रंग, रखे सिमन ज्ञान ध्यान तद्भुत, रखे सिमन बिन से दूजा, रखे सिमन दरगे मानी, रखे सिमन सुफल फला, नानक ताके लागो पाए, रखे सिमन उदरे मूचा, रखे सिमन सब कुछ सुजे, रखे सिमन पूरन आशा, अमृत नाम रित माए समाए, नानक जन का दासन दसना, रखो सिमरे से पतवंते, रखो सिमरे से पुरख प्रदान, रखो सिमरे से सर्व के राजे, रखो सिमरे सदा अविनाशी, नानक जन की मंगैर वाला, रखो सिमरे तिन सद बलिहारी, रखो सिमरे तिन सुख व्यावे, रखो सिमरे तिन निर्मल रीता, रखो सिमरे बसे हर नेरे, नानक सिमरन पूरे भाग, रब के सिमन कभो न जूरे, रब के सिमन सह समानी, रब के सिमन कमल विजासन, सुप्रभ सिमरन का अंत न पार, नानक तिंजा सरनी पया, हर सिमन लग बेद उपाय, हर सिमरन नीच चौंकुंड जाते, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन में आप निरंकारा, कर कृपा जिस आप बुझाया, नानक गुरमुख हर

0: राष्ट्रपति जय मात पिता सुत मीत न भाई जय माँ बयान दूत जम दल जय मुश्किल होवे अत भारी अनेक पुनः चरण करत नहीं तरे गुरमुख नाम जपो मन मेरे सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया लाख करोड़ी बंद न परे अनेक माया रंग तिख न बुझावे जय मार्ग ई जात केला ऐसा नाम मन सदा ध्याये छूटत नहीं कोट लगबाई अनेक विघन जय आय संगारे अनेक जोन जन्मे मर जाम ओ महिला मल कबो न धोवे ऐसा नाम जपो मन रंग जय मार्ग के गने जाय न कोसा जय पिंड महान गुबारा जा पन तेरा कोई न स्नानू जय माँ बयान तपत वो गाम जा त्रिखा मन तू जा करके भगत जनाकी बर्तन नाम हर का नाम दास की ओट हर जस करत संत दिन रात हर जन के हर नाम निदान मंतन रंग रत्ती रंग के हर का नाम जन को मुख जुगत हर का नाम जन का रूप रंग
1: नाम जब्द का परे न पांग
0: हर का नाम जन की बढ़ियाई
1: हर के नाम जन सो बापाई
0: हर का नाम जन को भोग जोग
1: हर नाम जब्द का जनाई भोग
0: जन राता हर नाम की सेवा
1: नानक पूजे हर हर देवा
0: हर हर जन के माल खजीना
1: अतन जन को आप रब दीना
0: हर हर जन के ओर सतानी
1: हर प्रताप जन अवर न जानी
0: ओर पोजन हर रस राते
1: सुन समाज नाम रस माते
0: आठ पर जन हर हर जपे
1: हर का भगत प्रगट नहीं छपे
0: हर की भगत मुकत भोग करे
1: नानक जन संकेते तरे
0: पार जाते हर को नाम
1: काम देन हर हर गुण गाम
0: सत्य उत्तम हर की कथा
1: नाम
0: की महिमा संतृत बसे
1: संत प्रताप
0: संत का संग बड़ भागी पाइये
1: संत की

0: गुणचित प्राणी
1: कवन मूलते कवन दिष्टानी
0: किंतु सास वार सिगारिया
1: गर्भगन में जिने वारिया
0: वार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध
1: वाजोबन भोजन सुख सूद
0: वृद्ध प्या ऊपर साख सहन
1: मुखा प्या बैठ को देन
0: ए निर्गुण गुण कछु न बूझे
1: बख्श लेओ तव नानक सी जय
0: जे प्रसाद तार ऊपर सुख बसे
1: सुद्रात बीन बनता संग हसे
0: जे प्रसाद पीवे सी जल जला
1: सुदाई पवन पावक कमुला
0: जे प्रसाद भोगे सब रसा
1: सगल सामग्री संसाद बसा
0: दिने हस पाप कर नेत्र रसना
1: इसे त्याग अवर संरचना
0: ऐसे दोख मूड अंत व्यापे
1: नानक कार लेओ प्रभापे
0: आद अंत जो राखण आर
1: किसी प्रीत न करे गवार
0: जाकी सेवा नाम निज पावे
1: तासियो मूड़ा मन नहीं लावे
0: जो ठाकुर सत सदा हजूरे

0: संग रचाए
1: छोड़ दूर संग मचे
0: जो शरणा सो अस्तर कर माने
1: जो वन सो दूर पराने
0: छोड़ जाए तिसका शर्म करे
1: संस आई तिस पर हरे
0: चंदन लेप उतारे तो हुए
1: गर्दा प्रीत बसम संग हुए
0: अंधकूप में पतित बिकराल
1: नानक काट दे प्रभु दयाल
0: करतूत पशु की मान जात
1: लोक पचारा करे दिन रात
0: बार पे अंतर मल माया
1: सबस नाय कच करे छपाया
0: बार ज्ञान ध्यान स्नान
1: अंतर रापे लोप स्वान
0: अंतर अंगन बार तन स्वान
1: गल पातर कैसे तरे यथा
0: जागे अंतर वसे
1: नानक तेजन सहस मात
0: सुनंदा कैसे मार्ग पावे
1: कर गए ले ओढ़ निभावे
0: ताप जारत बुझे डोरा
1: जिस कहिए तो समझे गोरा
0: ताप विसर पद गावे गोंग
1: जतन करे तो भी सुर भंग
0: कह पिंगल पर्वत पर पवन
1: नहीं हो तू आउस गवन
0: करतार करुणा मैं दीन बेनती करे
1: नानक तुम्हारी के पात्र है
0: संग सहाय सो आवे न चीत
1: जो बैराही तासु प्रीत
0: बलुआ कह कर पीतर वसे
1: अंकेल माया रंग रसे
0: दृढ़ कर माने मने प्रतीत
1: आला आवे मुड़े चीत
0: वैर विरोध काम क्रोध मोह
1: झूठ विकार महालोक द्रोह
0: यहाँ जुगत बिहाने के जन
1: नानक राख लेव आपन कर करम।

0: एक वस्त्र धारण विखूड गवावे तो मुड़ा को का करे ताको कीजे सब नमस्कार सर सुख ताऊ मन उठा सर तो नानी तिन पाया खा पी बरते अनुदुरास अपने मन रोज करे बहुत उसका विश्वास न होवे रब की आज्ञा माने मत है नानी साहिब सदा दयाल सर पर होवत जान अनेक ओ बिन से ओ मन पछतावे लपट रहते आनंदार ताको आत ना आवे के कर कृपा नानक आप ले लाई मिथ्या में ममता माया मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रंग संग माया पे गस्ता मिथ्या आप सुपर कर दुमान नानक जब जब जीवे आर के चरण मिथ्यास्पद दर को ही रहे मिथ्या रसना भोजन स्वाद मिथ्या मंत्र लो दुबावे मिथ्या वास लेत विकारा सफल दे नानक हर नाम ले साध बिना के हो सूचा मुखावत आके दुर्गंध में बिना जू के पी जाए जू के पन के निरारत धाम नानक ताके बल बल जाओ मन में प्रीत मुखों गंडलावत बाहर बेक न काऊ भीन आवत जावत जन में मरे किसकी सीख करे संसार नानक कुंजन चरण प्राता अपना किया आपे माने किसे दूर जनाओ किसे बुझावत मेरा
1: सब को जाने आदम की रहत
0: थांत नंतर रे आस माए सो सेवक जिस कृपा करी निमक निमक जा

0: सरस्वती,
1: हे प्रसाद सती अमृत
0: खाए, तिस ठाकुर को रख मन माए,
1: हे प्रसाद सुगंध धन लावे,
0: तिसको सिमरत परम गत पावे,
1: हे प्रसाद बसे सुख मंदर,
0: इसे ध्याए सदा मन अंदर,
1: हे प्रसाद गृह संग सुख बसना,
0: आठ पर सिमरो तिस रसना,
1: हे प्रसाद रंग रस भोग,
0: नानक सदा ध्याए ध्यावन जोग,
1: हे प्रसाद पाठ पटंबर अंडावे,
0: इसे त्याग का दवर लुभावे,
1: हे प्रसाद सुख से सोई जय,
0: मन आठ पर ताका जस गावी जय,
1: हे प्रसाद तू सबको माने,
0: मुक्ता को जस सन्मुखाने,
1: हे प्रसाद तेरो
0: मन सदा ध्याय केवल पार ब्रह्म,
1: जी जब दर गए मन पावे,
0: नानक पसे प्रिय कर जावे,
1: हे प्रसाद रो कंचन दे,
0: दिलावो तिस राम स्नेही,
1: हे प्रसाद रो लरे
0: मन सुख पावे हरन जस कहत,
1: हे प्रसाद तेरे सगल सिद्ध ठाके,
0: मन सन्नी पर ठाकुर प्रभु ताके,
1: हे प्रसाद तुझको न पहुंचे, मन सास
0: सास रो प्रभु चे,
1: हे प्रसाद पाई दुर्लभ,
0: नानक ताकी भगत करे,
1: नानी
0: तेरी रखे,
1: मन
0: आठ पर कर तिसका ध्यान, तिस पग को सास सास चितारी,
1: सुप्रभ
0: सिमरो सदा अनूप, सुप्रभ सिमर सदा दिन रात, गुरु प्रसाद नानक जस कहे, जय प्रसाद पीखे विस्माद, जय प्रसाद सुख सहजे बसना, जय प्रसाद संपूर्ण फले, जय प्रसाद सुख सहज समावे, गुरु प्रसाद नानक मन जागो, इस भक्त को मूल न मनो विसार, प्रेम मूर्त ताको जाप,
1: तेरे
0: कारज पूरे, इसे जान मन सदा
1: जुरे,
0: रे मन मेरे तू तासु राच, नानक जाप जपे जब सोए,
1: आप
0: गावाए सो हर गुण गाओ, प्रभु दया ते कमल विगास,
1: प्रभु
0: दया ते मत उत्तम हुए,
1: शर्म निदान प्रभु तेरी मैं आप।

0: वाचस्पती
1: सागलीकोत साख्य संपर्क सुज्ञान सासंगोत निवेरा साख्य संगीक उपर्जतन नानी साध की शोभा ब्रह्माए समानी साध के संग सदा पर कुल है साध संग अमृत रसुंचा साध के संग मनोहर बैन साध संग सद मन पावे साध संग नानी प्रभु सो प्रसन्न साधु के संग महापुनीत साध के संग न भींगा पैर साध संग जाने परमानंदा साध के संग तजे सब आप नान साध रू बनाई साध के संग सदा सुख पावे साधु के संग अजर सहे साधु के संग मैं पहुंचे साध के संग केवल पार ब्रह्म नानी साधु के कुर्बान सासन साजन मीत कुटम निस्तारे जिस दंते सब को बरसावे साध के संग सोभा सुरदेवा साध संग अमृत गुण गायन नानी साध के संग सफल जन्म दर्शन देखत होत निहाल साध के संग नरक पर हरे साध संग विचरत हर मेला साध के संग निर्था जावे नान कुदरे साध सुन से साध संग हर के गुण गाओ साध संग सरपन स्तरे साधु के संग गट गट डीठा साध संग गत भई हमारी नानी साध बेटे संजोग जेता सुने तेता बख्याने साध की उपमा रही भरपूर साध की सुबह सदा बेअंत साध की सुबह मूसले ऊंची।

0: प्रदीप,
1: जैसे जल में कमल लेप,
0: जैसे सूर सर को सुख,
1: जैसे राज रंग को लागे तुल भवान, जो बसदा को खोदे को चंदन लेप, नानी जो पावक का सह स्वभाव, जैसे मैं न लागे जरा,
0: जैसे धरु पर आकाश,
1: ब्रह्मयानी के नाई अभिमान, मन अपने सत्य नीचा,
0: नानुजन प्रभाव
1: करे,
0: आत्म रस ब्रह्मयानी चीना,
1: ब्रह्मयानी ते कज बुरा न भया, ब्रह्मयानी के दस अमृत बसी, ब्रह्मयानी की निर्मल जुगता, नानी ब्रह्मयानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्मयानी का नहीं विनाश, ब्रह्मयानी परोपकार महा, ब्रह्मयानी ले धावत बंदा,
0: ब्रह्मयानी सुपर फला,
1: नानी ब्रह्मयानी जपे सगल संसार, ब्रह्मयानी के बसे प्रसंग, ब्रह्मयानी के नाम परवार, ब्रह्मयानी अभूत त्यागत, ब्रह्मयानी के घर सदानंद, नानी ब्रह्मयानी का नहीं विनाश, ब्रह्मयानी एक संहिता, ब्रह्मयानी का निर्मल मंत्र, ब्रह्मयानी का बड़ प्रताप, ब्रह्मयानी को बल बल जाइए, नानी ब्रह्मयानी आप परमेश्वर, ब्रह्मयानी के सगल मनमाए, ब्रह्मयानी को सदा देश, ब्रह्मयानी सर का ठाकुर, ब्रह्मयानी की गत ब्रह्मयानी जाने, नानी ब्रह्मयानी को सदा नमस्कार, ब्रह्मयानी सजीव नहीं मरता, ब्रह्मयानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्मयानी का सब ऊपर हाथ,

0: नदी, कई कोट आचार बिवारी, कई कोट बंदर में उदासी, कई कोट तपीसर होते, कई कोट कब का विचारे, नानक करते का अंत न पावे, कई कोट अंधा ज्ञानी, कई कोट अभिघातम निकोर, कई कोट पर दुख ना करे, कई कोट पर देश भरमाए, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पाथर गिरक निम जाए, कई कोट देश को मंडल, कई कोट देव दानव इंद्र से छत्र, नानक जी जिस बारे तिसने निस्तारे, कई कोट वेद प्राण स्मृत और शाश्वत, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट गिरी मेर सुवरण दीवे, कई कोट भूत प्रेत सुकर्मिकाच, नानक आप अनेक त्रया भरपूर, कई कोट नर सुर निवासी, कई कोट भोजोनी फिर, कई कोट गाले थकवाए, कई कोट माया में चिंत, नानी सब कुछ प्रभु के हाथे, राम नाम संति में लागी, आत्म में पार ब्रह्म लहंते, तिनको मिलियो प्रभु नास,
1: पार ब्रह्म तिन लागा रंग, नानक तेजन सदा

सब कुछ स्लो करने हार तांदन तरी के सोई गौत करे रंग पार नानक कीमत कर न जाए गुरु प्रसाद की नेव ज्ञानी कोड मदे के निवेले चीना अंदर अपार रूप गड़गड़ सुनी सरवण

0: राष्ट्रपति
1: संत के दुखन आर्जा घटे
0: संत के दुखन जमदे नहीं छुटे
1: संत के दुखन सुख सब जाए
0: संत के दुखन नरक में पाए
1: संत के दुखन मत होए मलीन
0: संत के दुखन शोभा देहीन
1: संत के हते को रखे न कोई
0: संत के दुखन धान भ्रष्ट होए
1: संत के पाल कृपा जी करे
0: नानक सत्संग निंदक भीतर
1: संत के दुखन ते मुख भवे
0: संतन के दुखन कागज लवे
1: संतन के दुखन सर्व जोन पाए
0: संत के दुखन त्रिक्त जोन गरमाए
1: संतन के दुखन तृष्णा में जले
0: संत के दुखन सब कौशल है
1: संत के दुखन तेज सब जाए
0: संत के दुखन नीच नि जाए
1: संत दुखी का था को नाहे
0: नानक संत पावे ताए विगत पाए
1: संत का निंदक मात दाई
0: संत का निंदक निक न पाए
1: संत का निंदक मा त्यारा
0: संत का निंदक परमेश्वर मारा
1: संत का निंदक राज ते ही
0: संत का निंदक दुर्गा दीन
1: संत के निंदक को सर्व रोग
0: संत के निंदक सदा विजोग
1: संत की निंदा दुख में दुख
0: नानक संत पावे ता उसका भी होए मोख
1: संत का दुखी सदा पवित्र
0: संत का दुखी किसे का नहीं मित
1: संत के दुखी को डान लागे
0: संत के दुखी को सब त्याग
1: संत के दुखी मांगकारी
0: संत का दुखी सदा विकारी
1: संत का दुखी जन्म मरे
0: संत के

0: पाए,
1: संत दुखी अद्विस्ते टूटे,
0: संत का दुखी की तकाज न पहुंचे,
1: संत दुखी उद्यान रमाइए,
0: संत का दुखी उजड़ पाइए,
1: संत दुखी अंतर ते तो था,
0: जो सास बिना में ते की लो था,
1: संत दुखी जड़ किचनाए,
0: अपन भी जा पे ही खाए,
1: संत दुखी गबर न रखना,
0: नानक संत पावे ता लय उबार,
1: संत दुखी यो बिल लाए,
0: जो जाल भी उन मछली तड़फराए,
1: संत दुखी भूखा नहीं राजे,
0: जो पावक इंद निद्रा पे,
1: संत दुखी छुटे केला,
0: जो बुआड़ दिल गेत मैं दुहेला,
1: संत दुखी धर्म तेरा,
0: संत का दुखी सत मिथ्या कहत, नानक जो तुझ पावे सोई दया,
1: संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए,
0: संत के दुखी को दर गए मिले सजाए,
1: संत का दुखी सदा सहकाई,
0: संत का दुखी न मरे न जीवाई है,
1: की पूजन आसा,
0: संत का दुखी उठ चले निराशा,
1: संत के लोक न तिष्ठे कोई,
0: जैसा पावे तैसा कोई होए,
1: रत्न मेटे कोई,
0: नानक जाने सच्चा सोए,
1: तिसके ओ करने हार,
0: सदा सदा तिसको नमस्कार,
1: उस्तत करो दिन रात,
0: तिसे त्यावो सास ग्रास,
1: तिसका किया
0: जैसा

0: बुजुर्गनों सिमरो हर हर राय, एक आस हर मन रखो, नानक दुख भरम भौ जाए। अष्टपदी
1: मानु की टेक वृति सब जान,
0: देवन को एक है भगवान,
1: जिसके दिए रह गाए,
0: मौन दिशा लागे आए,
1: मारे लागे को आवे,
0: मन के कछ नहीं आते,
1: जिसका हुकुम बूझ सुखोए,
0: जिसका नाम रख कंठ परोए,
1: सिमर सिमर सिमर प्रभु सोए,
0: नानी बिगन लागे कोए,
1: सत मन में कर निरंकार,
0: मन मेरे सद व्यवहार,
1: निर्मल रसना अमृत पियो,
0: सास वेला कर ले जियो,
1: नैनो पे ठाकुर का रंग,
0: सास मिल से सब संग,
1: चरण चलो मार गोविंद, कर हर कर्म सर्वनार
0: कथा,
1: पागी ते जन जग माहे,
0: के गुण गाए,
1: राम नाम जो करे विचार,
0: कनी संसार,
1: मंतन मुख बोले हर मुखी,
0: जानो ते सुखी,
1: एको एक एक पछाने,
0: कियो सोजी जाने,
1: नाम संग जिसका मन मान्या,
0: निरंजन जान्या,
1: गुर प्रसाद अपना सुजय,
0: जिसकी जानो तृष्णा बुझे।

0: सोई लागे। नाम जपत पावे विश्राम।
1: पुरख उत्तम करमान।
0: जो कुछ करे सो प्राप के रंग।
1: हर संग
0: सहस पाए होए सोए।
1: कले हार पछाने सोए।
0: प्रभु का किया जन मीठ लगाना।
1: जैसा साते साथ इष्टाना।
0: जिस दे उपजे तिस माए समाए।
1: उस त्रिदान उनऊ बनाए।

अविनाशी प्रभापे आप येसु प्राणी लोचे कोए गजनानु जपे कर नाम प्रभु की जो सकल

0: सर्वांतरे को सोए गैर गंभीर गई सुजाना कृपा दान दयाल वसंत नानी के मन योनाओ जो कर पाया सोई होग जिसका मंत्र न जाने और सर्व दुख सुनिए करता के तब मैं तपिसर ग्रस में भोगी नानक इस प्रकार किने अंत न पाया सगल देव हारे अब गाए सगल प्रोही अपने सूत जिन्दास नाम ध्याने से जन्म रे फिर आवे जाए जैसा जनावे तैसा नानक जान नाना भी करे एक रंग रवम नासी एक अंकार पूरे पूर्ण सब ठाए अपनी कीमत आपे पाई जब जब जीवे नानक हर नाव नाम के दारे खंड ब्रह्मांड नाम के दारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के दारे सगल आकार नाम के समुद्रे सुन श्रवण नानक चौथे पद में सुजन गत पाए पुरख सत केवल प्रधान सत पुरख सब माय समानी वो सत सत उत्पत जिसे बुझाए तिसे सब बली विश्वास सत नानक गुरते पाई सत्य जन जाके हृदय प्रवेश नाम जबत ताकि गत होए आपे जाने अपनी मित गत अवर न बूझ करत विचार नानक ज्योतिष भावे सोवरतिया जिन बूझा ते साया स्वाद गुर के वचन पदार्थ लय जाके संग तरे संसार जन के संग एक रिव लागी
1: गुण गोविंद कीर्तन जन गावे गुरु प्रसाद नानक फल पावे
0: श्लोक आद सच युगाद सच अभ सच नानक हो सिद्ध सच अष्टपदि पूजा सत सबसे दार नाम सत सत्यावनहार आपे गुणकारी सुरत सत सज सुनता नानक सत सत प्रसोए करण करावन ते मूल पछाणिया तत ज्ञान तिस मन

प्रभु का सेवक नाम के रंग सेवक की राखे निरंकारा नानी सो सेवक साथ साथ सुमारे अपने सेवक की सर पर राखे अपने सेवक को नाम जपाई ताकि गत में कोई न लाखे सबके सेवक ऊंचे ऊंचे नानी सो सेवक दैस प्रगटाया वसम करे लश्कर कोट लाखे ताको राख देकर हाथ जिसके करता फिरते जात सब्जियां का रखा सोए जब नानी प्रबलक बिडाणी पिय अमृते मन तंत्र पिये तिसके चवर नहीं बिष्टाया नामो सुकर नाम का संग मंथन नामे नाम समाने कौन आने जन के सत्काम प्रभु अपने जन की नींद आत प्रभु अपने सुराय समाए

0: मंत्र प्रतिजन्दे सुजन सब दुख का दाता जिसके दर सब पाप मिटावे जन की तू सेवा लाग
1: ज्ञान न होवी तेरा नानक तिस जन के पूजो सद पैरा सलोक सत पुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाओ तिसके संग सिख उदरे नानक हर गुण गाओ अष्टपदी सेवक हो गुर सदा दयाल गुरबचनी हर नाम उचरे गुर का सिख विकार ते हटे गुर का सिख गुण भागी है नाले सतगुर सिख को जिए नास मारे गुर की आज्ञा मन में सह हरा नाम दे सत्यावे सेवक के कार्य रास इसको होत प्राप्त स्वामी नानक सो सेवक गुर की मत ले सो सेवक परमेश्वर की गत जाने अनेक बार गुर को बजाओ आठ पैर पार ब्रह्म गाता एक आप नहीं कच ब्रह्म नानक ऐसा गुर वड भागी पाई है परस चंगत निर्मल बीत पार ब्रह्म की दर्गे गवे हम संतों का तंपतियां ने
0: हमारे स्पेके हुए संत
1: नानी जिस बारे किस लय मिलाए सतपुरख पूरन विवेक अगम गोचर प्रभ निर्वाणी ताकि कीमत के न पाई चरण कमल हृदय सिमरे नानी जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने अमृत पीवे अमर सोहोए जाके मन पकड़े गुंतास सचुते सेवक को दे मन में राखे हर एक नानी ब्रह्म मोह दुख तते नासे आनंद वया दुख नाठे भाई साधु के पूर्ण उपदेशे सगल व्याध मानते ज्ञान से सासन जब नाम रारी सुन नानी घर जो श्रवण कलाधार जिन संगीम हुई अपनी कीमत आपे पाए सर्व निरंतर एक को सोए वह परगा साथ के संग अपनी कल धारी अनेक बार नानक बलहारी सलोक सा

0: सरस्वती
1: जाचक
0: करके पा देवो हर नाम पार्वन में सदा पूर सा सात्वत में द्यावो भरत करो प्रकीनत नीत नानक मांगे ना प्रसार हर रस पावे बिरला कोए पूरन पुरख नहीं डोलाने उपजे चाव साथ के संग अंतर प्रगा संदे निवलाग नानक नाम रते सुखोए सतगुर ते निर्मन मत लई सेवक कीनो सदा निहाल जन्म मरण दुख ब्रह्म गया रव रया सत्संग अधूरी नानी भक्ति नाम समाए सोके उसे जे किया जाने सोके उसे जे जीवन जिया गुर प्रसाद को बिरला लाखे जन्म जन्म का टूटा गांडे प्रभु अपना नानी जन दया आन त्याग जपोवर नाम आप जपोवर नाम जपावो मिन भक्ति तनो सी चार बुढ़ जात पाए विश्राम नानक नाम जपो गुंतास मंतन अंतर ही स्वाओ मन विकसे सा चरण।

भगवशस्त्राकृपाल सर्वघटाकरत्वत्पाल भगजनाके प्राणदार भगवाय लावे मनीत नानक तुमरी शरण प्रभु भगवान एक निमकार के गुण गाए हर के नाम की कथा मन भाई प्रश्ना जपी हर नीत हृदय

0: निर्भय जपे सकल पा मिटे
1: बाते प्राणी छुटे
0: प्रभाके तिसनाई दुख
1: मन हुआ सुख
0: चिंता जाए मिटे अहंकार
1: कोई न पोचन हार
0: रूप ठाणा गुरसूरा
1: नानक ताके कारज पूरा
0: मत पूरी अमल जाके देष्ट जान कमल जाके अनूप
1: सुंदर रूप
0: तन सेवा सेवक परवान
1: प्रदान।

0: सरस्वती पार्विकट कर मनंतर की उतर चिन्ह संजना का दूर मन मांग सागर सागर तरो पूरे नमस्कार सासंग भज परमानंद गुण गोविंद अमृत रस पियो हे गुरु जाके रंग अनेक दुर्भंजन पूर्ण कृपाल नानक जी का ये आधार अमली लाल रतन आप तरह लोके निसार जाके मन लगा हर रंग सुन सुन आनंद करे प्रभु का जय नान गुदरे जिनके साथे कर के पाप प्रभाव मिलाए अमृत नाम सासन लैन उन्होंने सेव की सेव राम नाम सुन रसना कहते नानक निवई खेप हमारी सावधान एकागर चीत जिस मन मसे सोत निदान प्रदान परक प्रकट सब लोए कौन ना होए अपन जान
1: नानक जिसे प्राप्त होए बुद्ध ज्ञान सर्व ते सिद्ध।

सरनाई एक अरदास बाट कीरत की गुरु रामदास राखो सरनाई लेखे कते न छूटिए खिन खिन भूलन हार बख्शन हार बख्श ले नानक पार उतार बख्शन हार बख्श ले नानक पार उतार वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

सतगुर सहज समाध रव्यो सामान निरंतर उदारो चित दार धरण पिखंत कल मल त्रसन साद रंग सहज कल उचर जस जंपो लहने रसन उदारो चित दार धरण पिखंत कल मल त्रसन साद रंग सहज कल उचर।

0: दर्शन परसे गुरु के अठ सठ मजन होए।
1: सच तीरथ सच स्नान अर भोजन पाओ सच सदा सच पाखंत सो है। सच पायो गुर शब्द सच नाम संगति वो है। जिस सच संजम वर्त सच कब जन कल वखाण। दर्शन परसे गुरु के सच जन्म परवान। जिस सच संजम वर्त सच कब जन कल वखाण। दर्शन परसे गुरु के सच जन्म परवान।
2: वाहे गुरु जी अम्मे दृष्ट सुख करे हरे अग पाप सगल मल। काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सबे बल। सदा सुख मन वसे दुख संसार खोवे। गुर नवनिध दरियाओ जन्म हम कालक तोवे। सो को टल गुर सेविए अहनस सह।

0: नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं
1: नमो इष्टिष्टे नमो तंत्र तंत्रं
0: सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणसि
1: अनुपे रूपे समस्तु निवासि
0: सदा सिद्धा बुद्धा वृद्ध कर्ता परम परम परमेश्वरं प्रोच पालन।

0: चक्र पास चतर चक्र वास चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परमंग न पित्र न चित्र न मित्र पर है पवित्र
1: भगवती छंद तो प्रसाद कस्ते के आछे जदेस के आपे जपे
2: के
1: आदित्य
2: सुख
1: राजन प्रभा है के तरमंग तुझा है
2: के
1: जब तंग कितरी है के छत्रन छत्री है
2: के ब्रह्मन स्वरूप है के अनुभव अनुभव
1: के आद अदेव है के आप अपेव है
2: के चित्रंग बहीन है के एक अधीन है
1: के रोजी रजा के रहीम में रिहा
2: के पाक गैब है के गैब उल गैब है
1: के अफुल गुना है के साहा नसा है
2: के कारण कुनिन गए के रोजी देंद है
1: के राजक रहीम है के करमंग करीम है
2: के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है
1: के सर्वत्र

0: सदैवं प्रदानी
1: सर्वत्र जाप्ये के सर्वत्र जाप्ये
0: सर्वत्र पाने के सर्वत्र माने
1: के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र
0: सर्वं कली में के परम फही में
1: के आकल लामे के साहिब कला में
0: सुनल वजू है तमाम रजू है
1: हमें सुसलामे सुनी खुद बदामे
0: गनी मुशिकस्ते गरीबुल परस्ते
1: बिलंदुल मकाने जमीनुल जमाने
0: तमीजुल तमाम रजूअल निधाने
1: हरी फुल जी मेरे यायक यकीने
0: अनिकुल तरंग है अपीत है अपंग है
1: अजीजु निवाज है के निमुद के राज है
0: निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है
1: प्रमुक्त प्रवाह है सुजुक्त सुधा है
0: सदैवं स्वरूप है अपेदी अनूप है
1: समस्त पराज है सदा सर्व साज है
0: समस्त सलाम है सदैव।

0: स्वरूप है, अचिज है, अछूत है,
1: नरकम बनास है, पृथ्वी ऊपर वास है,
0: निरुक्त प्रभा है, सदैवं सदा है,
1: विभुक्त स्वरूप है, प्रयुक्त रूप है,
0: निरुक्त सदा है, विभुक्त प्रभा है,
1: अनुक्त स्वरूप है, प्रयुक्त रूप है,
0: चाचरी छंद अपंग है।

0: विरक्त है, अनास है, प्रकाश है,
1: निचिंत है, सुनिंत है, अलिख है, अधिक है,
0: अलिख है, अपेख है, अटा है, अगा है,
1: असंभव है, गम है, नील है, नाद है,
0: नित्य है, सुनित है, अजात है, अजाद है।

0: सर्वं सर्वं तर्मं
1: सुप्ता सर्वं मुक्ता
0: सावल शंत्वे प्रसाद नमो नरकनासे सदैवं पुरगासे
1: अनंगं सरूपे अभंगं बेपुते
0: परमात्म
1: पातन परमाते सदा सर्वसाथे।

0: कि आत्म प्रभा है
1: कि अचलन अनंग है क्या मितो अपंग है
0: मन पाशंत है प्रसाद मुन मन पर नाम गुण गन मुदाम
1: हर बार अगंज हर नर पर बंज
0: गन पर नाम मुन मन सलाम
1: हर नर अखंड पर

0: ब्रह्मांड दिस पंड
1: जल थल महंत दिस बेअंत
0: अनुभव नातुरास
1: आजान बाहुए के सदा
0: ओंकार याद कथनी अनाथ
1: खल खंड ख्याल गुर भर अकार
0: कर कर पर नाम चित जर नाम
1: अंशिज गात आजिज नबात
0: अंजंज गात अंदरंज बात
1: अंटुट पंडार अंठट अपार
0: अनीट दर मत टीट कर्म
1: अन बण अनंत ताता महंत
0: हर बोल मना शंत वे प्रसाद कुर नाले है कल है
1: खल खंडन है मैं मंडन है
0: जगदेश्वर है परमेश्वर है।

0: निवारे,
1: कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के कौन को जात निवारे,
0: बारी पुजान के पूप बलि बिन्यावर शीश न जात बिचारे,
1: इते पे तो कहाँ पे पूपत अंत को नागे पाए पधारे,
0: सब देश दिशान को बाजर टोल मृदंग नगारे,
1: गुंजत गुण का जान के सुंदर हिंसत ही है राज जारे,
0: पवान के भूपत कौन गने नहीं जात बिचारे,
1: श्रीपद श्री भगवान।

0: वो पुंज खपेंगे
1: सात समूह पर सन फिरे जब सत्र सबे अब लोग छपेंगे
0: मानव इंद्र गजेंद्र नरात अब जो अंतर लोक को राज करेंगे
1: कोट स्नान गजादिक दान अनेक स्वयंवर साज भरेंगे
0: ब्रह्म महेश्वर विष्णु सचिव पद

0: हमारे पच्छा श्री अस्तु जो करो रक्षा।
1: हमारे साहिब सन साहिब प्यारे
0: दीन बंद रुस्तन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता।
1: काल पाए ब्रह्मपुत्र काल पाए शिव जी अवसर
0: काल पाए कर बिशन प्रकाशा सकल काल।

0: कुंचरस्तुला सब पर कृपा दृष्टर फूला
1: संतन दुख पायरगी सुख पाए श्रृंगेशगी
0: एक एक की पीर बचाने कट कट के पट पट की जाने
1: जबत कर कर तारा प्रजा तब दे पारा
0: जबत कर कर तुम कबू तुम में मिलत दे तर सबू
1: जेते वर्ण से सब दारे आप आवनी बुझ उचारे
0: तुम सब इते रहत निरालम जानत वेद बेदर आलम
1: लिंकाने कानलम आद नील नाद सा

0: कृपा करी अम्बा जग माता गंस करा पूरन सब राता
1: दिल विक सकल दे को हरता दुष्ट दोखियन को चय करता
0: श्री यीशु जब दे दियाला पूरन ग्रह कंतस काला
1: मन वाचन फल पावे सोई दूप न तिसे व्यापत कोई अरिल
0: इसने मुझो यास रसना पावे इसने मोज लचितता आवे
1: दूप दर्द पौ निकट न तिन नर के रहे उजो या की एक बार चौपाई को कहे चौपाई
0: संवत चित्र सहस मुनी जय सहसन दीन की जय
1: भाद्रव सुधी अश्विनी रविवार तीर सकद्रव दिन सुधारा सुधी
0: भाई के जब ते तुमने तब ते कौन तेरे नियानियो
1: राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न मानियो
0: मेरे सास वे सो बेर

0: पीवो अमृत सदा रहो हरन जपियो सारंग पानी
1: कह नानक सदा गावो ऐ सच्ची बानी
0: सतगुरु बिना होर कच्ची है बानी
1: बानी दा कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बानी
0: कहंदे कच्चे सुनदे कच्चे कच्ची आत्म खानी
1: हर हर नित करे रसना कहा कछु न जाने
0: जिस जिनका हिलया माया बोलन पैर वाणी
1: कह नानक सतगुरु बाजो होर कच्ची बानी
0: गुर का शब्द रतन है हीरे जित जनाओ
1: शब्द रतन जित मन लागा एहो हो आसमाओ।

0: को जग में मुख ते हार चित में जोध विचार
1: जसनाव चढ़े पाव सागर तारे
0: धीरज धाम बनाए एह तन बोध सिंह।

0: करने को सास सास प्रतपाले।
1: प्रभु से ओ लाग रहे हो मेरा चीत,
0: आदि अंत पर सदा सहाई तन हमारा मित रहा।
1: मन बिलास पे साहेब के अचर्ज देख बढ़ाई,
0: हर सिमर सिमर आनंद।

0: पार ब्रह्म शरणाई
1: चौगिर्द हमारे राम कार दुख लगे ना पाई
0: सतगुरु पूरा पेटिया जिन बनत बनाई
1: राम नाम औखे दिया एक है निगलाई रहा।

जन नानक गुरमुख जो नर खेलै सो जिन बाजी कर आया पौड़ी वड्डी हूँ वड्डा पार तेरा मर्तबा।

रंग हसे रंग रोवे चुप भी कर जाए परवाह नहीं किसे केरी बाज सच्चे ना।

नाम कंडन को राजकुमार अंत चल गोहारी गुण निदान गुण तनि गाय जाको कृपा तारी सो सुखिया तन उस जन्मा नानक तैस बलहारी

हर कथा हर जस साध संगत स्यो एक मोहत नय मलायो बिक्ष पीक रंग कुसुम को परगय जोहन जायो चन कमल

स्वामी सागल रेण हो रहिया साधु संगत होए प्राप्त ता प्रपना लहिया सदा सदा हम सोरे तुमरे तू परम हमरो मीरा।

सात सहज रस मन पुजियो सगले दुख परायण रहाओ जो मांगे सोई सोई पावे सेवर के चरण रसायण जन्म मरण दोते छूटे पवजल जगत तरायण खोजत खोजत तत विचारियो दास गोविंद परायण अबनसी खेम चाजे नानका सदा

रहाओ, जिसके से फिर तनी संभाले बिन से सोग संताप। हाथ दे रखे जन अपने हर हुए माई बाप।

आन अवरस जान करी रहाओ बड़े पाए गुरु अपना पायो गुरमो को हर नाम दिलायो हर हर जाप ताप व्रत निमा हर हर त्याई